0: 92.7 FM के गेंद और सिरी इधर 3.7 हार्ट एफएम की नॉन टाइम राइट नाउ वी गेट 6:44
1: हार्ट एफएम
0: हे स्वीटार्स वी गेट ओकरागा कमिंग थ्रू दिस नेक्स्ट सॉन्ग इज ब्रॉट टू यू बाय Virginia Hot Dog बस द हॉट डॉग Virginia